दे महान आगमन मेरे आ रहा है। ए दिन ए रातां ए बख्शीशां दे समय हन, इस नूं जप जप के असी सफल करना। हो सकदा इना दिना दा अमृत वेले जागया होया, गुरु नानक सानू सदा लई अमृत वेला दे देवे। जो सिदक श्रद्धा प्यार दे नाल भई कीर्तन विच जुड़दा है, कीर्तन दी समाधि लाउंदा है, ए जपा सिर जप है, तपा सिर तप है। कितना भी कठोर हिरदा होवे, अज इस तरह सिद्धा ने धन नानक तेरी वड्डी कमाई। ए गुरु नानक जिसने एक वेरा भी तैनू धन किया है ना, ओ जन्म मरण तो रहत हो गया। इसलिए जगत दे गुरु हन कौन,

इस संसार सागर विच किते मैं डुब ना जावां, इस संसार दे पदार्थां विच किते रुल ना जावां, इस लई तू मेरी बां पकड़, क्योंकि असी कमजोर हां, असी पकड़िए हाथ छुट जाएगा, इसलिए मोको बाहां दे बीठला मेरी पकड़ो जीवा। जिवें भाई साहब नंद लाल जी ने अरदास कीती, सतगुर प्याल प्याला मैनू दिल दे रंगन वाला, होमन दूर मुश्किलां सबे थीवे मन मत वाला। जे अपने दर घर दा नाम दे देवे सानू, तैनू की फर्क पवेगा। साडा मन भी मतवाला हो गया तां फिर संसार वल क्यों खचित होवेगा। जे साडी बां तू फड़ दवे तां फिर संसार विच लुभाए मान करन वालियां वस्तुआं साडा कुछ नहीं बिगाड़ सकनगियां। इसलिए कर कृपा, सदा पकड़ो मेरी बां, एथे ओथे जिथे किथे जिउंदे मोए असी तेरे हां। हे निरंकार मेरी बां पकड़ ले, कृपा कर।

नट नारायण राग दे अधीन गुरु ग्रंथ साहब विच एक होर राग स्वरूप मिलता है, वो है नट। असल विच नट नारायण राग नट दी ही एक प्रकार है, पर दोनों राग भिन्न अते स्वतंत्र राग हैं। जिथे गुरुदेव ने नट नारायण की वरतों कीती है, उत्थे स्पष्ट तौर ते नट नारायण महला चौथा पंजवा आदि लिखा है। नट नारायण का स्वभाव है काला, ये काल मिटदी है ना दे अमृत जल नाल। नाम नाल मन थिर हो जाएगा, नटखट नहीं रहेगा, नट नारायण दी थां नर नारायण ले लवेगा। खिन खिन नर नारायण गावे है, मुख बोले है नर नर हरे। मन दी स्थिरता ले नाम अमृत जल है, बाणी दे सार विच जिस नाल निस्तारा होना है। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कह सेवक जन मानै, प्रतख गुरु निस्तारे। इस राग दे आरोह विच सत्ते सुर अते अवरोह विच धैवत अते गंधार वकल ढंग नाल लगदे हन। दोनों मध्यम लगदे हन। इस दे गौंग दा समय राग दा दूसरा पहर है। राग नट नारायण विच पहला शब्द मेरे मन सेब सफल हर काल, ले गुरपग रेन रवाल। गुरु रामदास जी पातशाह जी दी रचना। इस शब्द दा कीर्तन कर रहे हन भाई परमजोत सिंह जी। दूजा शब्द सरवण करो भाई हरिंदर सिंह हरचरण सिंह जी फक्कर। गुरु अर्जन देव जी दी रचना है। उलाहनु मैं काहू न दियो। पहला शब्द मेरे मन सेव सफल हर का।

तू बेअंत को बिरला जाने, को बिरला जाने। गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द, गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द। रंग हाए मुख्तलिफ दारिद बुते अजारे मा, तू बेअंत अपनी माया आप सारी आपे देखन हारा। नाना रूप तरे बहु रंगी सब तेरे निया, तू बेअंत ब्रह्मा न जाने अंत न पावत देव सबे। मुन इंद्र महाशिव जो करी, तू बेअंत अत ऊंचा ताका दरबारा।

मन दा चोला किवें रंगा ते मन दा चोला किवें रंगा ये सवाल ही ऐसा है, ये बोली ऐसी है, आम बंदा इस गल का जवाब किवें देवेगा।

मन पकड़ी हुई है, समाधि लाई हुई है, उत्तों ते चिट्टा हो गया पर अंदरों मैल है, यदि तन मैल नहीं गई। साबण नाल धोंदा फिरदा है, कर्मकांडा नाल इस चोले नूं धोना चाहुंदा है। यह धोना चाहुंदा है कर्मकांडा नाल, ते हजूर कहिंदे जे तू इस चोले नूं इस तरह धोना चाहवें

अज समा मिले साध संगत दी सेवा कर ली हसूर कहने गंगा असी भी अज अपने तन का

तो आप कराएं। ते हुण तुसी दावा करके कह सकते हो, जदों घरां जाओगे ये दावा करके कह सकते हो कि किसी ने बैकुंठ नहीं वेख्या, असी बैकुंठ क्यों हो।

संगतां पहुंच गई हैं गुरु के दरबार में। जदों दर्शन ड्यूटी कोल आईया संगतां ते हाथ जोड़ के सारियां संगतां खड़ियां हो गई हैं। खैर हो पाई पहला गुरु तो आ गया ते ले लेंगे आ गया कि मैं ले वाह गुरु तेरी आज्ञा मंगण का कितना सुंदर।

माता गंगा जी अपने महलों में चले गए ते श्री गुरु अर्जन देव पातशाह कोई पुराना कंबल अपने पावन शरीर ते ओढ़िया होया है ते जोड़ियां विच आके खलो गए। हजूर कहंदे गुरसिखो जाओ तुसी गुरु रामदास साहब दा दर्शन करो ते तुहाडे जोड़ियां दी राखी मैं करांगा। प्रेरणा ले ली इस गल तो जे किसे गुरसिख दा जोड़ा सानू चुकना भी पवे ते मन विच नफरत आ जांदी। हजूर जोड़ियां विच खड़े हैं रुमाल लेके एक एक जोड़े नू साफ करी जांदे। संगतां अंदर गईयां बेबल हो गईयां। जिस गुरु नू लपण वास्ते जिस गुरु दे अगे मत्था टेकणा ओ ते सिंघासन ते विराजमान ने। बाबा बुड्ढा जी तो पुछिया कि बाबा बुड्ढा जी ने चारे पासे तकिया नजर पई नेत्रां चो जल आ गया आख्याओ गुरसिखो जिस ते चरण परसन वास्ते आयो ओ ते तुहाडे जोड़ियां च खड़ा है। ते आके बाबा बुड्ढा जी ने पुछिया पातशाह जोड़ियां विच की कर रहे हो संगतां दर्शन करन वास्ते आई हैं जोड़ियां च की लब रहे हो। एक एक जोड़े नू पातशाह वेख रहे कहनन बाबा बुड्ढा जी थोड़ी देर होर ठहर जाओ मैं एक एक जोड़े नू चुक के तां वेख रहे हां मैनू किते गुरु नानक दा जोड़ा लब जाए। मैं सुनिया कि जदों साध संगत कठी होके टुर पवे विच गुरु नानक भी टुर पैंदा है। मैं सुनिया कि साध संगत आई है ते उत्थे भी मैं इन्हां दी सेवा करन वास्ते तां गया सी कि किते सेवा करदियां करदियां किते गुरु नानक दे चरण भी मेरे हथ आ जा। मैं गुरु नानक दा जोड़ा ढूंढ लवां। हजूर दे नेत्रां च वैराग आ गया। अक्षय बाबा बुड्ढा जी सात संगत नू कह दे थोड़ी देर होर रुक जा मैनू इस रस तू ना तोड़न गुरु नानक दा जोड़ा लब जाए ते मैं अपने आप ही हरिमंदर साहब पहुंच जावांगा। इतनी निमत्ता जे इतनी निम्रता सी ते तवियां ते बह के भी क्रोध नहीं आया। जे इतनी निम्रता सी ताइयों ते पट्टा ने कह दिता के धरण गगन नवखंड में जोत स्वरूपी रहो भर भन मथुरा कछ भेद नहीं गुर अर्जन प्रतख। जदों हजूर दे सिर ते गर्म रेत पै रही सी तखत दी थां ते तत्ती तवी सी ते जिन्हां ने वेख्या उन्हां ने हां दा नारा मारिया एक ही हो रहा है ते हरिमंदर साहब

सिमरन तो खाली ने गल्ला नाल आसमान ते चढ़ जांदे गल्ला नाल ही आसमान नूं थले ले आंदे कहंदन के जिहड़े सिमरन तो खाली ने कबीर साहब कहंदन उन्हां तो सदा डरदे रहिए।

आगम आगोचर अत वड़ा बड़ा वड़ा है अतुल जिन्हों कोई तोड़ नहीं सकता ओदा कोई अंत नहीं पा सकता उस राम कोई तोड़ नहीं सकता।

जाना माथे तिल मथे दे तिलक ला ले हाथ विच माला फड़ ले ते राम राम कह लिया थोड़ी देर सारा दिन झूठ बोलिया ते समझिया कि हुण बस राम खुश हो गया।

लोगन राम खिलौना जाना लोका ने राम नु खिडौना समझ ले कोई बच्चा रुस जाए मिठिया मिठिया गल्ला करके बच्चे नु मना लेने ऐसे तरह लोग रब नु समझदे ने जो मर्जी करी जाओ जिन्ने मर्जी पाप करो झूठ बोलो बस थोड़ी देर राम राम कर लांगे वाहिगुरु कर लवांगे ते बस साडे पाप खत्म। पर कबीर साहब कहंदे ने नहीं ओ राम कोई खिलौना नहीं बच्चा नहीं जेड़ियां तुहाडियां गल्लां ते ओ खुश हो जाएगा।

जद तक मनो नहीं कहते। एक दुध बेचन वाली गुजरी नदी पार करके एक पिंड दुध बेचन आया करती सी। एक दिन वो दुध बेच के जदों वापस तुरन लगी ता मंदिर दे विच बहुत सारे लोग बैठे सन ते कथा हो रही सी। मंदिर दा पुजारी कथा कर रहे है कि जेड़ा इंसान राम राम कहंदा है ओ संसार सागर तों पार हो जांदा है। उस गुजरी ने कथा सुनी मन विच ये गल वस गई कि जेड़ा राम राम कहंदा है वो संसार सागर तो पार हो जांदा है। ए गुजरी कथा सुन के अपने घर नूं वापस मुड़ी जदों नदी पार करन लगी

पर जदू ए नाव दे कोल पहुंची बेड़ी दे कोल ता मन विच सोचदी है कि मंदिर दा पुजारी कह रहा सी जेड़ा इंसान राम राम कहंदा ओ ते संसार सागर तू पार हो जांदा ए ता छोटी जी नदी है जे संसार सागर आदमी राम राम कह के पार हो सकदा है ते मैं राम राम कह के ए नदी क्यों नहीं पार कर सकदा। मन विच भरोसा राम ते बज गए राम राम कर दी ए नदी दे विच वड़ी ते देखदिया देखदिया तुरदी तुरदी नदी दे अध विचकार चली गई। पानी दे उत्ते इस तरह तुरी जांदी है जिवें के लोक धरती दे तुरदे ने और देखदे देखदे आराम आराम कहंदे आ ए नदी पार कर गई। हुण जदों आंदी है तां वी राम राम कह के नदी दे उत्ते तुरदी आंदी है जदों वापस जांदी है उदों वी राम राम कहंदी नदी पार कर लैंदी। एक दिन मन विच ख्याल आया मैं राम राम कह के नदी पार कर लैनी है पानी उत्ते इस तरह तुरनी है इस तरह तुरनी है पानी उत्ते जिवें लोग धरती ते तुरदे ए राह मैनूं मंदर दे पुजारी ने दस्या है ते क्यों ना उस पुजारी नूं घर बुला के उन्हूं रोटी खुआवा प्रशादा छकावा ओदी सेवा करा। गुजरी तैयार होके घरों चल पई उसी तरह राम राम कहंदी नदी पार करके मंदिर जा पहुंची। बड़े प्यार नाल कहा पुजारी नूं पंडित जी अज चलो मेरे नाल मेरे घर चल के रोटी खाओ प्रशादा छको। पंडित जी तैयार हो पे अगे अगे गुजरी ते पिछे पिछे ए पंडित जी चल पे। तुरदे तुरदे जदू नदी दे कोल आए पंडित जी कहन लगे उस गुजरी नू के बेड़ी नाव ता दूसरे पासे है तू केड़े पासे आ गई है। गुजरी कहन लगी पंडित जी बेड़ी दी नाव दी की लोड़ है जद राम राम कह के इंसान संसार सागर तू पार हो सकदा है ते फिर बेड़ी दी की लोड़ है ए नदी ता छोटी है राम राम कह के इथू भी पार हो जावांगे। पंडित जी कहन लगे ए थोड़ी हो सकदा के राम राम कही जाइए ते नदी तू पार हो जाए। गुजरी कहन लगी तुसी मेरे पिछे पिछे आओ तुसी ते कदू दे राम राम कहंदे हो मैं ते हुणे कहन लगी हां ते नदी पार कर जानी हां। ए कह के राम राम कर दी ए गुजरी नदी दे उत्ते पानी दे उत्ते तुरन लग पई। ए देख के राम राम कहंदे पिछे पिछे पंडित जी भी तुर पे। जदों थोड़ी दूर गए पानी डूंगा सी ते जाके गोते खान लग पे। जदों डुबन लगे ते उस गुजरी नूं कहन लगे ए आप ते मरेगी नाल मैनू भी मारेगी। ओ गुजरी ते राम राम कहंदी नदी पार हो गई ते पंडित जी डुबदे डुबदे मसां बचे ते बड़ी मुश्किल दे नाल किनारे ते आके लगे। हुण सवाल ही पैदा हुंदा है राम राम ओ गुजरी भी करदी है ओ नदी पार कर गई राम राम ए पंडित भी करदा है पर ए डुबदा डुबदा बचिया
कारण की कारण ही हुई जो गुरु अमरदास पातशाह कहते ने कि राम राम के सारा संसार कहते पर सारे नु मिलता नहीं मिलता किनू जेड़ा पखंड ना करे बल्कि मनो राम राम।

उस पुजारी ने ते राम नु खड़ौणा ही समझे, क्योंकि राम नु मन विच नहीं वसाया। उस गुजरी ने राम नु राम समझिया, वो नदी भी तर गई ते संसार सागर तो भी तर गई। हुण कबीर साहब कहिंदे ने, मैं बौरा हो गया राम दे नाम दे नाल लग के। ओ बौरा नहीं जिन्हू लोग पत्थर मारदे ने,

लोग जेड़े ने ओ मैनू कहंदे ने कबीर बौरा है, कबीर बौरा है। क्यों? इस वास्ते कि ना पूजा करदा है।

रहत बिना न सिख कहावे। रहत बिना जिड़ा ना बाणी पड़ी ना अमृत धारी ना रहत च पूरा साहब जी कहंदे ने सिख किवें हो सकदा ते रहत तो बिना ओ चोटा खावेगा दुखी होवेगा।

फरमावे मैं चुपे पराया हक खावे पराई निंदिया करे ता गुरु साहब जी कहंदे ने ओनू राम ओनू वाहेगुरु किस तरह मिले कहन नू ते सारा संसार राम राम कहंदा वाहेगुरु वाहेगुरु कहंदा पर सारिआं नू

खेत वाल जा रहा सी, जाके ठाकर खूह चल रहा थले रख दिता। आखिर ठाकर जी ए तरलोचन कर रही जिथे पानी की थोड़ है, ए जगता खूह है, सब कुछ इथे ही मिलेगा, ताजिया सब्जियां मिल गया, नहाने की बड़ी मौज है, वेखो खूह चल रहा है, आप ही हूं स्नान करो ते मैं नका मोड़ा मां मुक्ती गल स्नान कराया। तन्ने ने मल मल के नका मोड़ के आ गया, हूं भगवान बाहर रख दिता है। इतने चिर नू तन्ने करवा लिया गई प्रशादा लैके, बड़े ही प्यार ठाकर परने उत्ते रख दिता है। रुखा सुखा जोशी एक कृति के घरों आ गया। तन्ने ने अर्ज की, भगवान जो गौ सूई सी हूं आप जी के बटांडे पंडित जी ने लै ले है, हूं तो आप जो कुछ भी करो रुखा सुखा आया है वही खाना है, फिर कोई बात नहीं, दो चार महीने तक दूसरी गऊ सुन वाली है, लहरां दरां बन जावन गियां, आओ भोग लाओ। हूं उसने पता नहीं सी भोग लाना है कि खाना है। काफी समा बहन तो बाद उसने स्त्री नूं आख्या, तुसीं जाओ जी घर नूं, शायद ठाकर दी संगत दे ना होवन, तुसीं

पत्थर दे विचों हाथ बाहर निकलिया। तने ने आख्या इवें ते गल नहीं बननी, ठाकर जी पंडित दे सामने साक्षात बैठ के रोटी खावे ते जट नूं कल्ला हाथ हाथ विखालदा है, इवें ते गल नहीं बननी। हुण भगवान साक्षात रूप विच आ के बैठ गए, पछा छकिया। दूसरे दिन का दुपहर चढ़ चुका है, भगवान तैं मैनूं बहुत भुखा मारिया है, देख आपां ने हुण कुछ नहीं करना, और देख ला हल चलदा पिया खूह, नक्की तैं मोने ने गाइयां तैं चरनियां ने, जट सौण लगा खूह थले तू तंद छावे। हुण तन्ना देखदा है ठाकर बोलदा नूं हक रहा है, क्यारे मोड़न जा रहा है, गाइयां नूं मोड़ के लिया रहा है। इतनी देर नूं तलोचन भी आ गया, सुना दे तन्या की हाल है। ठीक है पंडित जी तुहाडी कृपा, ठाकर दा की हाल है? पंडित जी जदों दा तुसीं मैनूं ठाकर दित्ता है मेरे घर ते लै रहे मेरा हो गया। पंडित आश्चर्य हो गया कि जट कोला है सचमुची दे ठाकर ते मैं अपने कोल लिता के रखे ने, मैं तुसीं झूठी मूठी दा ठाकर दित्ता सी, जट है ना पता नहीं ठाकर की हुंदा। पंडित जी तुहाडी बड़ी कृपा, धन्नी ने उठ के नमस्कार कीती। पंडित जी देखो ओ ठाकर गाइयां मोड़न गया है, हुण वेखो दूजे कैरे नूं पानी छड़ दिता है। पंडित आखदा है जेठ हाड़ दा महीना है, जट बौंदल गया है तूफान दे नाल। पंडित जी वेखो भगवान तुहाडे नजदीक दी गुजर गए ने, तुहानूं पछाणदे नहीं। तन्ने ने आख्या पंडित सोची पै गया है, तन्या कित्थे आया तेरा भगवान, वेखो तुहाडे कोल।

परम सम्मान योग सत्कार योग गुरु रूप हाजरीन जियो गुरु महाराज जी की अपार अपार बख्शंदगी है जिस दे तफैल बरकत बदौलत असानू गुरु महाराज जी की पवित्र हजूरी अंदर जीवन दाते दी परम पावन हाजरी अंदर गुरु दे उपदेश ते उपदेश सुनन दा सुभाग प्राप्त होया है। रोज रोज असां निक्की जी मौत मरदे हां ते मौत तो बाद ए परमेश्वर दी ही रहमत है जो जी दान देंदा है। पंजाबी दा अखाण है सोया ते मोया बराबर ही हुंदे ने। सियाणे आखदे ने मौत एक लंबी नींद है ते नींद एक छोटे अरसे दी मौत। हर इंसान जदों रात सौंदा है ते सोया मोया बराबर ही हुंदा है। मौत तवील नींद ते नींद कुलील मौत। इसलिए गुरु महाराज ने फिर सानू जी दान दिता है ते भगती लाया है। ए गुरु दी वड्याई है या गुरमुखां दी वड्याई जो हर मिलने वाले नू ए दात देंदे हन। जी दान दे भगती लाएं हास्यों लैन मिलाए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की आगोश विच हाजिर होके सानू गुरु दे अमलीक लाल रत्ना की प्राप्ति हुंदी है। इथों जितना भी इस खजाने नू खावीए खर्चीए वरतीए उन्ना ही जिवें होर वध्या होया हुंदा है इस विच कोई घाट नहीं पैंदी। रत्ना रत्न पदार्थ बहु सागर भरिया राम तो गुरु ने अपार बख्शिश करके ऐसा मौका सानू तंदुरुस्ती विच सावधानी विच बकायमी होशो हवास बख्शिया होया है। तो जितना भी इस तो फायदा उठाया जाए मुस्तफीद होइए फैजजाब होइए वो साढ़े अपने ही भाग हन। इस शब्द विच सतगुरु जी सानू परमेश्वर दी जात पाक उत्ते परम विश्वास बंधांदे ने। दुनिया अंदर भावे कोई छोटी पद्धर दा इंसान है चाहे कोई वड्डे रुतबे फजीलत रैंक शरफ बुजुर्गी टाइटल खिताब ते उच्चतम वाला बंदा है हर इंसान मांगत है लोड़कू है मोहताज है इच्छक है। ए वखरी गल है कोई किसे तो मंगे ते फलाने तो ना मंगे लेकिन मांगत जरूर है। और नाल दी नाल कितना ही इंसान चक्रवर्ती शक्तिशाली साहेब जर साहेब जायदाद होवे मित्रां दोस्तां रिश्तेदारियां वाला होवे कारोबार वाला होवे फिर भी वो अपूरन है असमर्थ है। इन्ना कुछ हुंदिया होया भी इंसान नू किसे समर्थ शक्ति पूर्ण व्यक्ति या पूर्ण शक्ति नाल जुड़े रहन दी जरूरत पैंदी है। तो गुरु साहिब जी ने भी इस लोड़ नू महसूसिया है ते गुरु महाराज कहंदे ने कि मैं ते स्वय तजर्बे नाल निज तजर्बे नाल इत्थे ही पहुंचा हां कि कितने वड्डे मनुख दी टेक लो आसरा लो कदी ना कदी बिरथा ही जावेगा। मानुख की टेक बिरथी सब जान ते इको ही गल है देवन को एक है पहवान। ओ वड्डा दाता है जेनू
ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੋਂ ਅਨਾਦੀ ਕਾਲ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਮੰਗਦੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਜਤਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਇਵਜ਼ਾਨੇ ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨੇ। ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਲੀ ਬੇਕਸਾਰਾ ਯਾਰ ਕਾਸ਼ਫ ਸਰਾਰ, ਕਾਸ਼ਫ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਤੇ ਸਰਾਰ ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਕਾਸ਼ਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਇਸਮ ਫਾਇਲ। ਤੇ ਸਰਾਰ ਸਿਰ ਵਾਹਦ ਸਰਾਰ ਜਮਾ ਸਿੰਗੂਲਰ ਪਲੂਰਲ ਇੱਕ ਬਚਨ ਬਹੁ ਬਚਨ। ਸਰਾਰ ਮੀਨਸ ਬਹੁਤੇ ਭੇਦ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲਤਾ ਵਿਚ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਾਸ਼ਫ ਸਰਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੇਅੰਤਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਵੱਡੇ ਦਾਤੇ ਦੀ ਹਮਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਏ ਕਿ ਰੋਖ ਰੂਹਾਨ ਕੀ ਰੋਜ਼ੀ ਨਾ ਟਾਰੇ, ਰੋਜ਼ੀ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿਲੋਕ ਤਰਾਜ਼ਕ, ਰੋਖ ਰੂਹਾਨ ਕੀ ਰੋਜ਼ੀ ਨਾ ਟਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨੇ, ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦੇ। ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸੰਤ ਭਗਵਤੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇਕ ਰੂਹਾਂ ਰੱਬ ਪ੍ਰਸਤ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਖਿਆਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਏਡਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਏਡਾ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਹੈ। ਰੋਜ਼ੀ ਹਿਰਾਜ ਵਿਲੋਕਤ ਰਾਜ਼ਕ, ਰੋਖ ਰੂਹਾਨ ਕੀ ਰੋਜ਼ੀ ਨਾ ਟਾਰੇ। ਰੋਖ ਮੀਨਸ ਰੁਖੀਆਂ, ਰੂਹਾਨ ਜਮਾ ਹੈ ਰੂਹ ਦੀ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੁਖੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਜ਼ਗੀਆਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਰੁਖੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਚਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲਚਕਦਾਰ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਦਰਖਤ ਗਜ਼ਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੜਾਂ ਗਜ਼ਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰਿਆਵਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚ ਲਚਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਲੱਕੜੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਮਰ ਗਈ, ਅਕੜ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਤਕਣੀ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਬੜੀ ਰਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਾ ਆਦਮੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਕੜਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਲਚਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਐਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਮਾਗ ਲਚਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੋਇਆ ਦਿਮਾਗ ਆਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਬੰਦਾ ਆਕੜਦਾ ਹੈ, ਹੋਮੇ ਵਿਚ ਆਕੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਆਕੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੁਰਦਾ ਹੀ ਆਕੜਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਜੋ ਰੁੱਖੇ ਨੇ, ਸੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਲਚਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁਨਕਰ ਨੇ, ਤੇ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੈਬੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡ ਮੁੱਲੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਇੱਕ ਛਿੰਨ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਰਚਨਾ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਧੁੱਪ, ਮੱਟੀ, ਆਕਸੀਜਨ, ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਪਦਾਰਥ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੈਬੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਆਂ ਵੀ ਮਾਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੇ ਮੁਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੇਰੀਆਂ ਨਿਮਤਾਂ ਵੀ ਮਾਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੁੱਖ ਰੂਹਾਨ ਕੀ ਰੋਜ਼ੀ ਨਾ ਟਾਰ। ਤੋ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਿਆਣ ਰਾਗ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹੀ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਦਿਸਿਆ ਏ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲਿਆ ਏ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਹੂਰੋ ਮਲਾਇਕ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਉਹਨ ਤੇ ਮੰਗ ਕੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਏ। ਮੰਗਤਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗਾਂ? ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਮਿਲ ਗਈ ਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਗ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਧਰ ਉਧਰ ਮੁਖਦੰਤ ਰਸਨ ਕੱਸ ਜਾਏ, ਇਧਰ ਉਧਰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਹਾਜਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਸਭ ਹਾਜਤਾਂ ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨਿਸ਼ਚੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗਾਂ? ਹੋ ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਦਾਤਾ? ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਅਖੁੱਟ ਨੇ।
मुहि दूजी नाही ठौर जिस कह हम जावे। दुनिया विच असी वेखते हां कि एक मांगत जदों घर आ जाए सदा देवे या किसी दुकान ते कोई पैसा मंगना आ जाए, कई बार वेखण चाहता है मालिक मकान या मालिक दुकान कहता है माफ करो बाबा माफ करो बाबा, वो अगे तुर जाता है। सारे बाजार च गया माफ करो बाबा ही हुंदी गई, कासा ते कचकोल खाली लिया खाली रहा। किसे प्रवीण पुरुष ने किया कि तू सारे बाजार दुकाना ती लंघे आए, बड़े बड़े इत्थे स्टोर सन, बड़िया बड़िया दुकाना सन, पुश्त दर पुश्त चलन वालिया, ते बड़े बड़े दाते भी बैठे सन उत्थे, पर तेरे कासे अंदर ते दमड़ी भी नहीं है, सिक्का भी नहीं है, गया नहीं है तू? उन्हें कहा जी गया तो सा, फिर होया की है? जदो मैं दुआ कीती, जदो इल्तजा कीती, जदो खाली ठूठा अगे कीता, ते उन्हें अगे कहा माफ कर बाबा माफ कर बाबा। इस तरह मैं सारे घर दे अगियों दी आया, बीबिया माइया ने खैर तक कोई नहीं पाया, अगे जाओ बाबा जी अगे जाओ, इदा कहते मैं अगे तो अगे टुरदा गया, उन्हां दे माफ करो बाबा कहण नाल तुरदा गया, बाजार मुक गया घर मुक गए, इसलिए ठूठा खा लिए। उन्हें कहा सजना जे इस तरह अगे तो अगे जावे ताइयो हाल हुंदा है, पर जे तू किते टिक के किसे एक दे परवासे उत्ते किते यकीन नाल वासिक यकीन नाल मुस्तकम इरादी नाल बह जांदा ते मैनू यकीन है तेरा ठूठा सखणा ना रहंदा। हुंदा भी एवें है, किसे आख्या माफ करो बाबा, कम काज करके फिर आए, फिर उथे खलोता, तेनू क्या सी जा अगे, फिर कम लग गए, तू फिर इथे खलोता है, गया क्यों नहीं? वो पक्का मंगता है ते निश्चय वाले आखन लगा मैनू अगे कोई इनविटेशन आया है जी, कोई मदाऊ कीता है किसे ने, किसे निमंत्रण दिता है ते इथे अगे आ जा, तुसी ता कहीं जाओ अगे चल माफ कर, मैं ता हुण तेरा दर मल लिया है तेरी दहलीज मल ली है। अंत फिर ओ कुछ ना कुछ दे के ही छुटकारा करदा है। गुरु रामदास जी कहंदे ने कि मैनू ए निश्चय हो गया है मुहे दूजी नाही ठौर जिस पे हम जावे जावेंगे। तो जब तक कोई मंगता टीठ होके नहीं मंगदा, जब तक कोई पूर्ण निश्चय नाल टीठ होके नहीं मंगदा, टीठ कहंदे ने तोरी जाए कढ़ी जाए मोड़ी जाए फिर उत्थे ही रहना, जब तक कोई टीठ होके नहीं मंगदा उदों तक दाता कुछ नहीं देंदा। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने परमेश्वर नूं भी ऐसा ही एक जगह आख्या टीठ शब्द अलकाप वरत्या है, आदीठ धर्म आदीठ धर्म अत टीठ करम। वाहिगुरु तू भी अपने इरादे दा बड़ा पक्का है, ये तो मुराद है अत पुख्ता आदीठ धर्म अत टीठ करम। जाप साहब कई बारी अरदासां करदे जाओ मंगते जाओ ते उन्हें जो करना है वो करन कारण समर्थ हो कर दई है, आदीठ धर्म अत टीठ करम। जब तक किसे मंगते दे विश्वासी दे डिसाइपल दे मोहतकित दे फिदबी दे विश्वासी मुरीद दे जग्यासु दा अत टीठ निश्चा ना हो जाए परमेश्वर उत्ते कंप्लीट सरेंडर ना हो जाए आपा समर्पण ना कर देवे उदों तक कई बारी इनू शक्का शकूकां दा शुभात दा शक होना पैंदा है शिकार होना पैंदा है। इसलिए गुरु साहिब जी अपनी तजर्बाकार जिंदगी विचों कहंदे ने कि परमेश्वर दे दर नूं छड के जाना किते नहीं चाहिदा, क्योंकि मैं निश्चा तार लिया मोहे